0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट दी अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 करोड़ सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उससे हमें याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड छह महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं छह महीने बीमार रही। उसके दो साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके चार साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट, एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियाँ।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में। तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार हैं गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुणे रेडियो आवाज में 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

उनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। जब भी हम कुछ खास बात कर रहे हैं अवेकनिंग में, तो हमें लगता है कि जो पिछला हमने किया उस पर काम हमने किया दिन भर में, अब आगे देखें कि क्या वो सही है या नहीं। बहुत बार आपका मन करता है कि हमारे साथ शेयर करें, हमारा भी इसी तरह से मन करता है कि आगे बढ़ते जाएं। आपके ईमेल्स आते हैं, आपके फोन कॉल्स आ रहे हैं और पता चल रहा है कि हम रास्ता सही पकड़कर आगे चल रहे हैं, अनुभव होते जा रहे हैं। अगर आपको याद हो, हम इस वक्त बात कर रहे हैं एंगर की। पिछली बार हमने देखा था कि इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन एंगर के वो छोटे एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें हम नॉर्मल मान के चलते थे, और इरिटेशन तब हो रही थी जब हमारे अनुसार टाइम पर काम नहीं हो रहा था, और फ्रस्ट्रेशन तब जब लोग

0: हमारे अनुसार काम नहीं कर रहे थे। अगर थोड़ा सा रुककर हमने देखा, एक दिन का अनुभव हमारा ये कहता है कि यस आई कुड रियलाइज इरिटेशन हुई, फ्रस्ट्रेशन हुई, रोकी जा सकती है। अब थोड़ा और गहरे में जाते हैं, थोड़े वो स्ट्रांग वर्जन्स गुस्से के जिसमें आती है हमें रिजेंटमेंट या फिर कहें हेट्रेड। क्यों होती है रिजेंटमेंट और हेट्रेड, जो तब हमारे हाथ से बाहर होती सिचुएशन होती है, लेकिन इसे भी ला सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ा काम करना है अपना ध्यान रखना। अब इस पर कैसे काम करें, बात करने के लिए हमारे साथ है रामा कुमारी सत्यशिवानी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करें क्योंकि जिस तरह के हमारे पास लोगों के मेल्स भी आ रहे हैं, हर बार की बातचीत है समवेयर, इतनी छोटी छोटी बातें जिन्हें जीवन का हिस्सा बनाया हुआ था, साथ पकड़ के, जो आप हर बार कहते हैं कि पकड़ के चल रहे होते हैं, तो वो बोझ अनजाने में ही ढोते जा रहे हैं। अब अगर उनको छोड़ना, एटलीस्ट यू नो इट्स नॉट दैट आई एम नॉट गेटिंग इरिटेटेड एनी एवरी टाइम, बट आई नो इट कैन गो, यू नो दैट बिलीव एंड दैट रियलाइजेशन मेक्स मी फील वेरी लाइट।
1: इट्स लाइक बीमारी, इलनेस है। एक है बीमारी जो हमने स्वीकार कर ली थी कि पूरा जीवन ही हमारे साथ रहेगी, और एक है कि अब थोड़ा थोड़ा बीमार हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही होते हैं पता होता है कि ये ठीक हो सकती है। तो दैट्स अ वेरी बिग डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एक है कि सारी जीवन इस बीमारी को झेलना है, और एक है ये तो छोटी सी चीज है, ये ठीक हो जाएगी,
0: मुझे दवाई मिल गई है, यू नो।
1: हमने इरिटेशन को देखा और फिर इरिटेशन के लेवल पर अगर नहीं उसको रोका तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन होती जाती है। एंड हम बहुत बार ये अपनी वोकैबुलरी में भी कह देते हैं, वेरी फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड मतलब मुझे ये लग रहा है कि मेरी चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है। फ्रस्ट्रेशन तभी होती है कि आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग एंड इट्स जस्ट नॉट हैपनिंग। इट कुड बी ट्राइंग टू चेंज पीपल, ट्राइंग टू कंट्रोल पीपल, ट्राइंग टू कंट्रोल सिचुएशंस एंड इट्स नॉट हैपनिंग। मुझे अपने आप को बहुत प्यार से समझाना पड़ेगा कि लोग और सिचुएशंस अपने अनुसार चलेंगे। मेरा रोल है कि मैं उनको राय दूं, गाइड दूं, लेकिन फिर उसके बाद अपने आप को रोक दूं। इस नहीं अगर मेरे अनुसार हुआ तो आई एम नॉट टू गेट फ्रस्ट्रेटेड। कई बार जो हमारा औरों के प्रति गुस्सा होता है वो इतना ज्यादा हम अपने अंदर उसको भर लेते हैं कि फिर हमें वो गुस्से के अलावा और कोई एनर्जी हमसे क्रिएट ही नहीं होती। एंड दिस इज मोस्टली यू नो बिकॉज वी हैव द फीलिंग कि किसी ने मेरे साथ गलत किया है, किसी ने मुझे धोखा दिया है, किसी ने मेरे जीवन को ही पूरा जैसे ऊपर नीचे कर दिया। सो देन आई होल्ड अ ग्रज अगेंस्ट पीपल, दैट स्पेसिफिक पर्सन एटलीस्ट। मुझे वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं और मैंने उसके बारे में एक वो पकड़ लिया है अपने अंदर, एनर्जी को ब्लॉक कर लिया है। या रिजेंटमेंट, क्यों? क्योंकि किसी ने मुझे इंसल्ट किया है, किसी ने ऐसी कोई बात कह दी है मुझे जो मैं अब जीवन भर उस बात को भूलने नहीं वाली हूं। या तो मुझे कह दी है या फिर मेरे बारे में पीछे कह दी है जो फिर मैं उसको नहीं भूलने वाली हूं।
0: और मैं ये कहती हूं कि मैं उसे भूलना ही नहीं चाहती, यू नो। कितनी बार वो रिजेंटमेंट जो है वो मेरे जीवन का एक लक्ष्य बन जाती है, वो घाव रिश्ता ही रहे तो अच्छा है हम ये कहते हैं।
1: हाँ, लेकिन घाव अगर वहीं रहा और हर बार याद आता रहा तो वो घाव की हालत क्या हो जाएगी, नुकसान किसका हो रहा है। सी, हर समय हमें ये चेक करना पड़ेगा कि नुकसान किसका हो रहा है ये पकड़ के रखने से। हमें ये नहीं पता चल रहा कि हम जब पकड़ के रखते हैं तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मेरा नुकसान होता, और अगर मुझे छोड़ना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए छोड़ना है। वी नॉट डूइंग अ फेवर टू एनी वन। सम पीपल से लेकिन उन्होंने गलत इतना किया कि क्यों उनको फिर हम भूल जाए उस बात को, अपने लिए, इट्स जस्ट फॉर माई सेल्फ। तो ये जो, और ये कोई ऐसे नहीं कि गैरों के साथ हो रहा है या वर्क प्लेस में हो रहा है, अपने लोगों के साथ जिनके साथ यू आर लिविंग इन द हाउस एवरी डे, डे इन एंड डे आउट। लेकिन इकट्ठे रहते हुए अगर ये इस तरह की चीजें अपने अंदर अक्यूमुलेट करके हम रखते, सो इट इज अ बिग क्वेश्चन कि घर का पूरा एनवायरमेंट कैसा है और हम सबकी जो उस घर में रह रहे हैं मेंटल स्थिति कैसी है।
0: क्योंकि ये एंगर कहीं ना कहीं जस्टिफाइड मान लेता हूं मैं, you know?
1: हाँ, बिकॉज आई फील लेट डाउन, उन्होंने मेरे साथ गलत किया, अगेन मेरी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं की, लेकिन जो हुआ वो भी नो वन इज सेइंग के इट वॉज राइट और व्हाटएवर। लेकिन अब जब सारा दिन हमें एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे से इंटरैक्ट करना है, तो किस एनर्जी के साथ हम इंटरैक्ट करते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट

0: अपने अंदर क्या क्या भर के रखा हुआ है, और ऐसे कोई एक आधे के साथ नहीं है, हमारा कईयों के साथ ऐसे छोटी मोटी बातें हैं और हम उसको पकड़ के रखते हैं एंड वी थिंक वी जस्टिफाइड इन होल्डिंग इट देयर. यू नो मेनी कपल्स जैसे अब मिलते हैं कि उनका कुछ हुआ है आपस में, कोई एक इश्यू हो गया, प्रॉब्लम आ गई, सिचुएशन आ गई, खत्म हो गई ये सिचुएशन क्रॉस हो गई. सी दिस इज अ वेरी वंडरफुल थिंग कि किसी से बहुत बड़ी कोई गलती हो गई थी या समवन चीटेड ऑन अ रिलेशनशिप, चीटेड इन बिजनेस, चीटेड एट वर्क, वट एवर, सिचुएशन इज गॉन, वो परिस्थिति खत्म, हम वापस आ गए हैं, हम इकट्ठे काम कर रहे हैं या इकट्ठे घर पे रह रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी वो अभी तक पकड़ी हुई है.
1: यहाँ एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ. मैंने ये रियलाइज किया है ओवर द इयर्स, यू नो, लाइक अब ज्ञान को समझते हुए, कि जो हम ये सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं ना, जब हम सामने बैठ के कुछ कोई सिचुएशन आ गई, सपोज कुछ हो गया जिसको हमने क्रॉस कर लिया, उसके बाद जब हम बैठते हैं कि चलो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट हैड क्रिएटेड, व्हाट हैड हैपन, That doesn't work.
0: और हम सिर्फ वो एनालिसिस भी क्यों कर रहे हैं कि मैं आपको समझा दूं कि आप फिर से मत करना. यू नो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. इट्स जो हम कहते हैं ना लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, तो हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई बार लोग पूछते हैं कि अगर हम उनसे जो गलती हुई मैं बात करूं फिर जाकर, शुड आई डिस्कस ऑल दैट, विद व्हाट इंटेंशन, आपकी क्या इंटेंशन है,
1: हम थोड़े ऊपर हो जाएंगे
0: कि उनको बताना कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की, एंड देन सेंडिंग आउट द एनर्जी कि यू नो आप गलत हैं मैं सही हूं, विद दिस इंटेंशन नो डायलॉग विल टेक प्लेस.
1: बट विल ही एवर ही और शी एवर अंडरस्टैंड.
0: सी दिस इज व्हाट वी ऑलवेज थिंक ऑफ, उनको समझ में आएगा उन्होंने क्या गलती की. दिस इज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क. एंड हम अपना रोल और अपनी जिम्मेवारी बना लेते हैं
1: उनको
0: समझाना कि उन्होंने क्या गलती की, विद द वेरी होप कि अगर उनको समझ में आ जाएगा तो वो मेरे साथ फिर से
1: ऐसा नहीं
0: गलती नहीं करेंगे.
1: इसे फिर क्या करें,
0: तो वो सारी लर्निंग किसके लिए हो रही है, ये पूरा रिविजन पास्ट इंसिडेंट का, ये किसके लिए हो रहा है, उनको समझाने के लिए. आर दे इन माई कंट्रोल, आर दे इन माई कंट्रोल,
1: नो नो नो, बट देन इट मीन्स सी आई क्रॉस वन सिचुएशन,
0: लेकिन आई एम हैविंग टू क्रॉस लॉट ऑफ सिचुएशन. सी हमारा
1: फोकस बिकॉज ऑफ समबडी एल्स द सिचुएशन हैज कम. सपोज लेट्स टेक अ सिचुएशन, यू नो, लेट्स टेक ओके बिजनेस डीलिंग, यू नो, वी वर गोइंग फाइन, आई वॉज टेलिंग माई हस्बैंड ओनली और पार्टनर दैट डोंट गो इन टू दिस थिंग, दिस विल नॉट work very well because I can see it. He didn't understand and he went into this business. Whole of our you know family things were dependent on them, on the whole thing, jaise bhi wo karega jaise jayega, and he went, unhone kiya aur wo major disaster hua. Theek hai, he created that situation without even taking my opinion. Ab agar hum baithte hain samajhne ke liye ki what went wrong, Is it not right?
0: It is very right. लेकिन किस energy और intention के साथ बैठते हैं आप ये देखो. हम जब भी बैठते हैं ना बात करने के लिए, subconsciously हमारा जो energy level है वो ये है कि मैं दूसरे को समझा दूं कि तुम गलत है.
1: सी पर उनका decision तो गलत ही हुआ था ना.
0: सो के उन्होंने गलत समझ के नहीं किया था, उन्होंने अपने perspective से उस time राइट ही लिया था. हम ऑब्वियसली डिस्कस करते हैं, लेकिन डिस्कशन का पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए कि व्हाट वाज इट दैट वेंट रॉन्ग, यू नो, नॉट दैट यू वर रॉन्ग, यू डिडंट आस्क मी, आई वुड हैव गिवन यू द राइट एडवाइस. एक सिचुएशन है ना, एक डिसीजन गलत हुआ, व्यक्ति गलत नहीं है. हम जो एनर्जी भेजते थे ना, आप गलत थे, ये एनर्जी हम लोगों के परिस्थिति तो छोटी होती है, वो इन्वेस्टमेंट छोटी चीज थी, लेकिन ये हमारे रिलेशनशिप में एक वो लेकर आता है. जब हम हर ऐसी सिचुएशन के बाद छोटी छोटी बातें हैं, बच्चे ने मार्क्स ज्यादा नहीं मिले, हस्बैंड और वाइफ आपस में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं, यू शुड हैव डन दिस. नाउ इट इज नॉट अ कॉम्पिटिशन. हम क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को कि तुम गलत थे या मैं सही था. दैट्स नॉट ट्रू. वी शुड नेवर रब इन दैट सिचुएशन. यू नो हम बार बार घर में बहुत रब इन करते रहते हैं उसको बार बार, और दूसरे का घाव पहले जो जिससे वो गलती होती है वो कितने गिल्ट में होता है, दे नो व्हाट दे हैव डन. वी नीड टू उनको कंफर्टेबल करने के लिए, हमें एक्चुअली हमारा रोल होना चाहिए उनको कंफर्टेबल कर दे, ताकि वो उस गिल्ट से उस पेन से बाहर निकल आए. लेकिन हम तो और भी ज्यादा उसको रब इन करते हैं.
1: हम भी तो पेन में गए हुए होते हैं ना. उनको कुछ भी हील करने से पहले आई हैव टू हील,
0: आई हैव टू बी हील्ड. कि एक तो वो परिस्थिति मुझे ना इतना उसको एक परिस्थिति ही रहने दो, उसको एक इन्वेस्टमेंट ही रहने दो, वो एक बिजनेस डील ही थी.
1: यहाँ पे ना वो राइटियस एंगर लगने लगता है कि मैंने कहा था, यू नो, और वो बार बार जो, और वो बहुत लोगों के साथ हो रहा है.
0: पर लेकिन वो एक

0: इसलिए जो स्टेबल रह सकता है अपने ऊपर ध्यान, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे घर के वायुमंडल को, एंड स्पेशली जिनसे वो गलती हुई है, ये बच्चे से भी हो सकती है, मार्क्स उसके कम हो सकते हैं, इतनी सारी सिचुएशन है, तुरंत उसको इट्स ओके, इट्स ओवर, इट्स फाइन, यू कैन कम आउट ऑफ इट. इट हैज टू बी उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, बजाय के उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस
1: लो करना,
0: जो हम कह रहे हैं ना, उनसे बार बार वो गलती होती है. ये जो थॉट है ना, जो हम क्रिएट करते हैं, इनको तो ये सीखते नहीं है एक बार भी, इन्होंने बार बार यही वाली गलती करनी है. हम क्या एम्पावर कर रहे हैं, और वी डूइंग द ऑपोजिट, वी नॉट रियलाइजिंग कि ये एक एक थॉट जो हमारी क्रिएट होती है, यू नो, इवन सिंपल थिंग्स लाइक किसी से गलती हुई है, वो ट्राई कर रहा है, कोई और गलती भी हो सकती है पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी, और वो ट्राई कर रहे हैं उससे बाहर निकलने के लिए, एंड सामने वाला कहता है आई एम सॉरी, मैं फिर से नहीं करूंगा. एम आई रेडी टू बिलीव दैट?
1: नो, बिकॉज माई हर्ट इज टू स्ट्रांग.
0: माई हर्ट इज टू स्ट्रांग. सामने वाला कह रहा है आई एम सॉरी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये फिर से नहीं होगा, मैं अंदर ही थॉट क्रिएट कर लेती हूँ, अगर फिर से किया ना तो फिर. सो मैंने, किसी ने एक एनर्जी क्रिएट की है कि मैं फिर से नहीं करूंगा. यहां से क्या एनर्जी जानी चाहिए कि यस आई एम श्योर आप फिर से नहीं करोगे. ये बोलने की चीजें नहीं है, हम ऊपर से तो शायद बोल देंगे,
1: एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते. ओ नो नेवर. आई थिंक या मतलब रिलेशनशिप में या फिर बच्चों के साथ भी, जब बच्चे कहते हैं कि मॉम आई एम सॉरी आई हैव डन दिस सिगरेट पीने के बाद, या कभी, एंड पेरेंट्स कभी भी ये मान ही नहीं पाते कि ये नहीं करेगा,
0: तो दैट इज द रीजन कि वो नहीं करते हैं. और फिर हम ब्लेम उन पर डालते हैं. हमें ध्यान रखना है, दिस इज ट्रस्ट, एक दूसरे पर ट्रस्ट. लेकिन ये कब होगा? जब खुद अपने वर्ड की वैल्यू होगी तो दूसरों के वर्ड की भी वैल्यू होगी. अगर सामने वाला कहता है मैं नहीं करूंगा, इमीडिएटली क्रिएट अ थॉट कि यस अब ये नहीं करेंगे. यू नो, उनकी थॉट को एम्पावर करो. ये हमें बहुत ध्यान रखना है. हम थॉट क्रिएट कर देते हैं.
1: अच्छा,
0: सी, अब जैसे आपने ये थॉट क्रिएट किया कि ये तो फिर हो जाएगा,
1: चलो देखते हैं. हाँ. you know, चल देखेंगे, लेट्स सी, दिस इज व्हाट. But then
0: again, let's see with time. हाँ. क्या होता है, एंड फिर साथ में बोल भी देंगे अगर फिर किया ना आपने ये,
1: फिर
0: इट्स सेल्फ इज अ थॉट के आई हैव अ डाउट कि आप फिर से करने वाले हो. हमें पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम उनको वार्निंग दे रहे हैं शुरू में. यही हमें ध्यान रखना है कि ऐसी एनर्जी सारा दिन क्रिएट करते रहे जो खुद को भी एम्पावर करे और औरों को भी एम्पावर करे. ये हम क्योंकि अटेंशन नहीं रखते तो हमें ध्यान नहीं है कि हमारा एक एक थॉट कैसे दूसरे को डिस एम्पावर करता है. तो जब इकट्ठे हैं, चाहे ऑफिस में है चाहे घर में है, ध्यान रखें कि ये जो अपने अंदर भर के रखा हुआ है एक दूसरे के प्रति, इसको खत्म करें. और इसीलिए पिछली बार भी हमने देखा था कि फिर जब वो एंगर के रूप में बाहर निकल के आता, वो एक्सप्लोजन, तब ऐसी ऐसी बातें निकल कर आ जाती
1: जो हमने कभी सोची नहीं थी. बिल्कुल.
0: और फिर हम तुरंत दूसरे को एक्सप्लेन करते कि आई डिडंट मीन टू से दिस, मेरा तो बिल्कुल कोई भाव नहीं था. लेकिन जो भी हमारे अंदर से निकला है वो इसीलिए आया है क्योंकि यहां क्रिएट होता जाता, और निकलने वाला जो क्वांटम है वो बहुत थोड़ा होता है, लेकिन जो क्रिएट हुआ है दैट मस्ट बी सो मच के जो वो
1: उसको इतना निकला है, ओवरफ्लो होना था और इस कारण
0: तो जो निकला बाहर, शब्द जो निकले वो तो उतना नुकसान नहीं करेंगे क्योंकि सामने वाला हो सकता है उसको भूल जाए, लेकिन जो मैंने इतना संभाल के रखा है वो मेरे अंदर कितना नुकसान करता होगा. तो हमेशा जब भी ये आती है ना थॉट्स अपने अंदर, उसी टाइम रुक जाना चाहिए. वी नॉट रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. हमारी थॉट हम चेंज कर सकते हैं. ये जो हम पकड़ के रख लेते हैं ना, ये हर्ट के मेरे साथ धोखा हुआ या उन्होंने रिलेशनशिप में गलत किया, चलो मैंने माफ तो कर दिया, हम इकट्ठे तो रह रहे हैं, लेकिन क्या एनर्जी क्रिएट करके इकट्ठे रह रहे हैं? ऐसे इकट्ठे रहने का या ऐसे इकट्ठे काम करने का व्हाट वुड बी द पर्पस, जबकि जो ट्रैवल कर रहा है अक्रॉस वो एक नेगेटिव एनर्जी है. हम बच्चों के लिए इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन बच्चों को क्या वायुमंडल दे रहे हैं कि दोनों ने एक दूसरे के प्रति वो दर्द पकड़ कर रखा है. एंड फिर होता क्या है, जैसे ही कोई आर्ग्यूमेंट होती, वो सारा हर्ट, वो सारा दर्द जो अक्यूमुलेटेड है, वो सारा फिर शब्दों में निकल आता.
1: क्योंकि हमने ना एक और बिलीफ सिस्टम ये कि जब तक कि उसको सजा नहीं मिलेगी, जब तक कि उसको रियलाइज नहीं होगा, यू नो, द अदर पर्सन ने, वो बार बार रिपीट करेगा.
0: लेकिन ये हम अपने ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी ले लेते हैं, औरों को रियलाइज करवाना. अब सामने वाला कह रहा है आई एम सॉरी आई विल नॉट डू इट अगेन, लेकिन हम कहते हैं आपको रियलाइज ही नहीं हुआ है कितनी गलती हुई है. आपको रियलाइज नहीं हुआ है मतलब आई एम ट्राइंग टू

0: से मेरा दर्द नहीं खत्म हुआ है अभी, आप ऐसा कुछ करो जिससे मेरा दर्द खत्म हो। जिस दिन मेरा दर्द खत्म होगा उस दिन मैं बोलूंगी कि आपको रियलाइज हुआ है। इट्स नॉट पॉसिबल, आप मेरा दर्द नहीं खत्म कर सकते। इट इज माई प्रोसेस, आई विल हैव टू वर्क ऑन दिस। लेकिन हम अपने ऊपर वर्क करने के बजाय सामने वाले को बोल देते हैं आपको नहीं रियलाइज हो रहा है, आपको नहीं रियलाइज हो रहा है, क्यों? क्योंकि आई एम इन पेन, आई वॉन्ट देम टू डू समथिंग जिससे मेरा दर्द चला जाए। जिस दिन मेरा दर्द जाता है ऐसे आपको रियलाइज हो गया कि आपसे गलती हुई है,
1: अब आपको रियलाइज हो गया और फिर मैं उसको हथियार से बनाए होते
0: तो दैट वी इफ वी शिफ्ट द फोकस कि हाँ वो आत्मा भी अपनी जर्नी पर है, वो रियलाइज कर रहे हैं, पर क्या मैं रियलाइज कर रही हूँ
1: कि मैं अपने लिए क्या क्रिएट कर रही हूँ?
0: जो जो रियलाइजेशन करानी है अपने आप को करा लो, खुद अपनी बात मानते जाओ और अपने को इतना दर्द मत दो। ये जो जस्टिफाइड समझ लिया है कि जो दूसरों ने गलत किया, वी नॉट सेइंग कि जो उन्होंने किया वो सही था, बट अब हम जो कर रहे हैं वो कितना सही है, वो पास्ट हो गया ना, लेकिन हम तो उसको बार बार क्रिएट करते हैं।
1: अच्छा, वो दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए कितना गलत किया?
0: अपने लिए ही है, दूसरे के लिए नहीं है, अपने लिए है। और फिर जो हमारे अंदर क्रिएट होता फिर वो ऑब्वियसली औरों तक पहुंचता एंड फिर वो पूरे घर का वायुमंडल
1: इन समाज एवरीवेयर।
0: आई थिंक स्पेसिफिकली दिस वुड बी वेरी एप्लीकेबल इन कपल्स टूडे, हस्बैंड वाइफ, छोटी छोटी बातों की बहुत सारी चीजें, यू नो, मदर इन लॉ के साथ हस्बैंड ने कैसा किया, मदर इन लॉ आज हैं भी साथ में या अलग रह रहे हैं या शायद हैं भी नहीं, लेकिन वो बात
1: मेरी मम्मी के साथ, हाँ, इट स्टेज इट्स देयर।
0: सो नाउ दिस इज वेरी डैमेजिंग, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि ये जो रिजेंटमेंट अपने अंदर भर के रखते हैं ये है, इसको तो हम कचरा ही कहेंगे ना, जो अपने अंदर भर के रखा है। और ये बिटरनेस से मैं अपने आप को कड़वा बनाते जाते हूँ,
1: अपने लिए बहुत, अपनी नेचर वैसी
0: ये टॉक्सिक है, ये टॉक्सिन्स है। आज हम अपने शरीर को तो डिटॉक्सिफाई करते हैं, नेचुरल डाइट लेते, इसको कौन डिटॉक्सिफाई करेगा? इसके लिए कुछ नहीं करना है, दो मिनट बैठो, पास्ट है, फिनिश हुआ। लेकिन उन्होंने किया कोई बात नहीं, उन्होंने किया, हर्ट किसने क्रिएट किया और अभी तक क्रिएट कर रही हूँ, उस बात को खत्म हुए 8, 10, 15 साल हो गए, मैं अभी तक दर्द क्रिएट कर रही हूँ, कब तक? दिस आई हैव टू स्टॉप एंड चेंज। इट्स नॉट फॉर देम, इट्स नॉट फॉर एनीवन एल्स, इट्स फॉर मी। क्योंकि ये बिटरनेस जब तक मैं नहीं खत्म करती आई कैन नॉट बी हैप्पी, एंड प्रेजेंट मेरा अच्छा नहीं होगा, फ्यूचर भी नहीं होगा। एंड एक व्यक्ति के प्रति पकड़ी हुई बिटरनेस एक के प्रति नहीं रहती, वो और रिश्तों में
1: क्योंकि
0: भी
1: वो मैं, हाँ, आई नो, बिकॉज वो अंदर रहा ना, वो कहाँ,
0: वो बिटरनेस है। तो वो बिटरनेस तो मेरी ऐसे वाइब्रेशन है ना, मैं जहां भी जाऊंगी जिसके भी संपर्क में आऊंगी कहीं ना कहीं वो बिटरनेस मेरे अंदर से फ्लो करेगी। तो इसलिए अपनी ये सफाई करते रहना चाहिए। और क्योंकि ये रिजेंटमेंट, अगर रिजेंटमेंट लेवल पर नहीं खत्म हुआ तो नफरत,
1: एक्चुअली आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट की ये तो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम एक्सेप्ट करते करते जीते जाते हैं, यू नो, पूरा पूरा जीवन निकाल देते हैं ऐसे रिजेंटमेंट्स रखे हुए। लेकिन जो नफरत है वो कई बार तो मतलब इतने घातक लेवल पर भी आती है, और जब हम अपने आप को विक्टिम समझकर, यू नो, और वो विक्टिम कई बार तो ये है कि हमारे अपनों ने विक्टिम बनाया। जो विक्टिम जब किसी बड़े लेवल पर कोई नेचुरल डिजास्टर या कोई ऐसा क्राइम हो जाता है, तब जो विक्टिम है, तब जो हेट्रेड पूरे समाज के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति और फिर अपने प्रति।
0: यस, लेकिन इसमें भी, यस, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन, क्योंकि हमें कुछ ईमेल्स भी ऐसे आते कि मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा किसी ने इस तरह का पाप किया है, मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? मतलब वो अपनी डेस्टिनी खुद ही लिख देते कि इसके बाद जीवन में खुश रहना ये मेरे लिए संभव नहीं है। तो वी एब्सोल्यूटली अंडरस्टैंड कि जो हुआ that was not right for you, lekin ab aage how long do you want to carry that bitterness and that pain? ab isme ye hota ki pehle to ye jo victim wali feeling hai ki main, you know, apne aap se nafrat kai baar hame ho jati ki main hi gandi hu, kya main hi galat hu, mere sath unhone aisa kiya kaise, kisi ne galat itna kiya, to apni self esteem pehle crash ho jati, to wo pehle apne aap ko samjhana padega ki isme मेरी कोई गलती नहीं थी, समवन एल्स हैज मेड सम वेरी बिग मिस्टेक, इट वॉज नथिंग टू डू विद मी बींग अ बैड पर्सन। यू नो, हम अपनी इमेज यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, आई एम नॉट अ नाइस पर्सन, अपने आप के लिए नफरत क्रिएट करते, और दूसरों के लिए तो जो जिम्मेवार थे

0: वो तो करते ही हैं और अंदर ही अंदर अक्यूमुलेट करते जाते। इतनी बड़ी बात के बाद भी एक ही सोल्यूशन है एंड दैट इज टू फॉरगिव एंड टू फॉरगेट। उनको नहीं फॉरगिव कर सकते हम, क्योंकि वो उनकी अपनी यात्रा है, लेकिन हमें अपने आप को फॉरगिव करना पड़ेगा, अपने आप को हल्का करना पड़ेगा। उस बात को मुझे फिनिश करना ही पड़ेगा। इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं कि हमने एक बार आज बोला एंड इट्स ओवर, आई हैव फॉरगॉटन। इट विल टेक टाइम। लेकिन जब अपने ऊपर से जिम्मेवारी हटा दी कि मेरी इसमें गलती नहीं थी, किसी और ने किया, लेकिन अब मैं और गलत अपने साथ नहीं होने दूंगी, यू नो, एक पर्टिकुलर बात के लिए। अब मैं अपने ऊपर कितनी, किसी और ने मेरे ऊपर घाव लगाए, लेकिन जो रोज का घाव मैं अपने ऊपर लगा रही हूँ
1: उसको रीलिव कर करके
0: आई एक्चुअली गो थ्रू द एक्सपीरियंस ऑल ओवर अगेन। क्योंकि जब तक वो यहाँ पर है वो मेरा टेप रिवाइंड होता है।
1: एंड देन वी लैश आउट, यू नो, वी लैश आउट, हर एक उस व्यक्ति को लैश आउट करेंगे जो हमारे साथ सिंपथाइज करेगा, यू नो, बिकॉज समवेयर वो नफरत और रिजेंटमेंट इतनी ज्यादा हो चुकी है। तो वो जो मैंने क्रिएट किया, शिवानी, अमेजिंग थिंग इज दैट इफ इवन वंस आई एम एबल टू रजिस्टर दिस, कि ये जो अब पेन है ये मैं क्रिएट कर रही हूँ,
0: मैं ही क्रिएट कर रही हूँ। हमें लगता है कि वो सिचुएशन की वजह से हो रहा है, ये पेन मैं क्रिएट कर रही हूँ एंड पूरी पावर सारी मेरे पास है, इसको कब फिनिश करना है, एंड ये मैं अपने लिए कर रही हूँ। यू नो, समटाइम्स वी फील कि अगर हमने फॉरगिव कर दिया वो सामने वाले को, फॉरगिव मतलब अंदर से, तो हम गलत कर रहे हैं। ऐसे इंसान को हमें फॉरगिव करना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम उनको नहीं फॉरगिव कर रहे हैं, हम अपने को फॉरगिव कर रहे हैं। ये याद रखना है, डू नॉट, यू नो, वो एक घाव है जो बना हुआ है, उस घाव की हीलिंग भी कर सकते या फिर उस घाव को रोज रोज रोज और गहरा कर सकते हैं। अपने आप से प्यार करना शुरू करो। हो सकता है किसी ने आपके साथ गलत किया है, लेकिन अब नफरत क्रिएट करके हम अपने साथ गलत कर रहे हैं। दूसरों को हम नहीं रोक पाए जिन्होंने गलत किया, खुद को तो रोक सकते हैं।
1: हम खुद के साथ एक्चुअली गलत करते हैं।
0: हम अपने से नफरत करके अपने को बहुत बड़े बड़े घाव दे रहे हैं। ये उन घाव से भी बड़ा है जो किसी और ने दिया होगा।
1: और दूसरों से नफरत करके भी हम यही कर रहे हैं बेसिकली,
0: अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं ना, हेट्रेड क्रिएट कर रहे हैं। तो अपने से प्यार करो, अपने को क्षमा करो और अपने पर रहम करो। वी डोंट नीड सिंपथी फ्रॉम एवरीवन एल्स, कंपैशन, लेकिन वो भी अपने आप से, खुद के लिए, और उसके लिए हमें इसको अब खत्म करना पड़ेगा। मेक इट स्मॉल, है बहुत बड़ी बात, लेकिन अपने मन की शक्ति को उसको लेकर उसको छोटा करो, क्योंकि तब ही आई विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट। आई हैव टू कम आउट ऑफ इट, इंस्टेड ऑफ टेलिंग योर सेल्फ आई विल नेवर कम आउट ऑफ दिस। यू नो, हम ही अपने आप को कहते मैंने इस बात को तो मैं कभी नहीं भूल सकती। अपने आप को कहो मैं भूल गई, आई एम ओवर एंड आउट विद इट नाउ, मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करने वाली हूँ।
1: वेरी ट्रू। यू नो, पहले मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आती थी ये बात कि अपने लिए करना होता है, यू नो, यू शुड फॉरगिव फॉर योरसेल्फ, कि आपको उनको माफ करना है, उनको लेट गो करना है अपने लिए। अपने लिए इन द सेंस कि इट विल मेक यू फील गुड, या आप बड़े महान बन जाओगे। तो मुझे बहुत गुस्सा चल रहा था कि मुझे महान नहीं बनना, लेकिन आई सडनली रियलाइज कि इट इज नॉट दैट। जितना जो कुछ भी हो रहा है, मैं चाहे मैं छोटी सी चीज के लिए पेन क्रिएट कर रही हूँ, छोटी सी चीज के लिए गुस्सा क्रिएट कर रही हूँ, इरिटेशन, रिजेंटमेंट, उसने किसी ने कुछ भी किया, कोई नहीं कुछ कर सकता, कोई कुछ भी कर सकता है, वो उनका अपना है। चाहे वो मेरे लिए बहुत, यू नो, जिंदगी में नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन मैं अपने लिए क्या कर रही हूँ। इट्स सच एन अमेजिंग रियलाइजेशन। वी नीड टू रियलाइज, someday we need to realize कि हमें अपने आप को कितना प्यार करना है। थैंक यू सो मच शिवानी। आई थिंक आज समवेयर एक बहुत बड़ा वो एक मिथ ब्रेक हुआ है कि किसी के भी प्रति गुस्सा या एंगर बेसिकली अपने प्रति रख रहे हैं हम। अगर मन में कोई सवाल, कोई बात उठती है, आप हमारे साथ जरूर शेयर करें, या तो हमें फोन पर संपर्क करें या फिर ई मेल पर संपर्क करें। हमारे फोन नंबर हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, लेकिन आज एक बहुत बड़ा सूत्र मिला है, इसे जरूर इम्प्लीमेंट करें। बहुत पुरानी बातें भूलेंगे, बहुत कुछ पकड़ के बोझ में जी रहे हैं वो छूट जाएगा, एक नई जिंदगी आपके साथ होगी।

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूं, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में, तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल, सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: है कुछ तुमसे तुम्हारे
1: काले तू
0: अरे बाप
1: अरे मेरी प्यारी काली कोयल कहाँ छुप गई तू अरे जुलेखा
2: याला वो आ गया देखो देखो मेरे फेफड़े का टुकड़ा आ गया।

0: मिले पहचाना, मेरा नाम है हलीमा, प्यार से लोग मुझे कहते हल्लो।
1: तुम्हारा नाम क्या है?
0: बाके हल्लो, बाके हलवेले।

पहचान मेरा नाम है हलीमा, प्यार से लोग मुझे कहते हैं हलू। जब मैं पैदा हुई पूछो ना बात, ना दिन था ना रात, घड़ी के दो कांटे हुए तभी एक ही कांटा नजर आ, ना इधर ना उधर, किसे थी खबर बड़ी होकर मैं क्या बनूं। फिर जब मैं बड़ी हुई मेरी चाल बदलने लगी, हाय जब मेरी कंबल लटकने लगी, ऐसे ऐसे मैं गली गली भटकने लगी। फिर एक दिन वो मिला, क्या नाम था माटी मिले का, हाँ मैं मौज मिला। फिर तो हातिम हातिम, कल्लू लल्लू, देवू नजीर फकीरा।

ये आदत तो वो आधे जो एक दिन अपना घर फूके फूके फूके रे के पग घुंघरू पग घुंघरू बाद मेरा नाची थी पग घुंघरू बाद मेरा नाची थी नाची थी नाची थी नाची थी हाँ के

की गलियां ये मछली हुई अब खिली जलकलियां ये दिखती हुई खोखली रंग रलियां जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है।

श्री मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं। झनन न झनन न झनन न न न न कान कान कान आता मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं। झनन न झनन न झनन न न न मोर मुकुट सर कानों में कुंडल कर में मुरली जाग।

कन्हैया नट खटने राधा की कन्हैया था मिलई राधा ने पुकारा। राधा ने पुकारा हाय दई कोई आओ सखी कोई आओ सखी, फिर हाथ सुला कर बोली हटो नीला फिर हाथ

इतने में सूरज डूब गया, इतने में सूरज डूब गया, राधा की पायल जादू थी। दोनों में कला की लागू थी, राधा तय कह दूंगा, धागे से पैसा।

0: फूली है सांस।
1: डोंट बी सो स्मार्ट।

0: क्या है चितचोर?
1: 1 2 3 4
0: क्या है चितचोर?
1: यू सिंग लाइक किशोर बट शादी का डे
0: ओ यस सितंबर 8
1: वेरी लेट
0: डार्लिंग वेट

लग जा गले ए लग जा गले दुनिया चले छम छम छम छम छ छम छ छम ए गण हम तुम पे दिल निसार करता है रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है।

क्या बेईमानी, तेरा आसरा बोल के लूटता जाए। अरे अपने देश का कपड़ा और

0: अच्छा,
1: अरे हाँ, उजाड़ की शक्ल है गोरी।
0: तो क्या हुआ,
1: हो गया मिलना बहुत जरूरी।
0: चल पगली।

0: बड़ी अदा से बोली क्यों खफा खफा से
1: हाय मर जाऊं
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे
1: क्यों नहीं
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम।

0: जी?
1: बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। मजे मजेदार बने, मिर्ची मसा ले के चार खूब बने तैयार है।
2: दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दो

0: 呀呀，
1: 咱们咱们咱们咱们咱们पीते पीते चिलम चली वारे तमाकू तेरे घुंघट में फिट फिट घुंघट में फिट फिट घुंघट में फिट फिट हे हे
2: दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी
0: यो यो यो यो
2: दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी
0: यो यो यो यो
1: देखो चला रे चला रे चला हाय मेरा मन
0: तेरी गोरी गोरी तेरी तेरी पांगी चित्त मन
1: देखो चला रे चला रे चला हाय मेरा मन देखो वो चला देखो वो चला देखो वो चला रे मेरा मन
2: हे दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी

0: आप उस्तादी दिखाओगे या कव्वाली शुरू करोगे?
1: अरे कव्वाली सुनाता हूँ, सुनो छोकरे लोग, आज ऐसा जम के बजाओ कि मेरी जोरू का तंबू हदर जाए।
0: और बहनों ऐसा गाओ कि मेरे मियाँ का झोपड़ा उड़ जाए।
1: बजाओ रे।

दिल में रहता है कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुजर दूं, दाना किला है जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार बार चूमूं। दिल में रहता है कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुजर दूं, दाना किला है जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार

0: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए।
1: आहा।

कैसा भोला भाला अरे कैसा सीधा सादा मैं कैसा भोला भाला जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से

निहाल छोरा गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ खई के पहनो बनाओ रस वाला खुली जाए बंद अकल का ताला ओ खई के पहन

संभल ओए मोच न आ जाए मारना ऐसे ठोकर तेरा पैर पिघल जाए है कितनी नाजुक तू है संभल ओए

0: शबनम आप ही ठंडी फिजाओं से
1: जा जा।
2: अरे जा जा।

मद भरी आवाज आती है, हे हे हे जाजा, अरे जाजा जाजा जा रे जा।

खेल में मेलो दिल का ऐसा खेल दिखाऊं, नजरों की मैं डोर फेंक कर तेरा दिल उलझाऊं, पागल को पागल

यार जहाँ चार यार, जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ चार यार महफिल रंगीन जमे, महफिल रंगीन जमे दौर चले धूम मचे, मस्त मस्त नजर देखे नए चमत्कार। जहाँ चार यार, जहाँ चार यार।

पीछे बिल्ली चूहे को पड़ गए जान के लाले, बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे।

भागी चूहे की फूटी किस्मत जागी, तुम दबा के बिल्ली भागी चूहे की फूटी किस्मत जागी। आ खेल रिस्की था, खेल रिस्की था, विस्की ने किया बेड़ा पार। खेल रिस्की था, महफिल रंगीन जमे, महफिल रंगीन जमे, दौर चले धूम मचे, मस्त मस्त नजर देखे नए चमत्कार। जहाँ चार यार, जहाँ चार यार मिल जाए वही रात हो गुलजार। जहाँ चार यार।

उस के लफड़े लफड़े झगड़े अरे झगड़े लफड़े लफड़े लफड़े झगड़े झगड़े लफड़े झगड़े झगड़े लफड़े।

बन गई भोली, कुंडी खोली, हंस के बोली, जाने तमन्ना अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं, ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार। शौहर बिस्तर छोड़ के भागा और कुंडी ताला तोड़ के भागा, शौहर बिस्तर छोड़ के भागा, कुंडी ताला तोड़ के भागा, भागा रे भागा रे भागा रे भागा रे भागा। बोला देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है, वरना बीवी फिर मारेगी।

पंछ कहाँ रहता है, दरिया का बहता पानी चांद से।

कैसे घबराई के डर गया मैं तो मर गया तू क्या जाने मुझे कुछ हो गया ये गया वो गया हर डर

0: I'm too young to try this. Very nice. Have more. Hi, Sheriff.
1: Hi.
2: आप खड़े नहीं खा रहे?
3: जी नहीं, मैं डाइटिंग कर रही हूँ।
0: डाइटिंग?
4: लगता तो नहीं।

के हाथों कुछ ले जाते हैं, मस ले जाते हैं। लोगों के पास तन ढकने को कपड़ा नहीं और इन्हें तन ढकने का शौक नहीं। ये गुलाबी रात वाले काली रात के जिम्मेदार शबाब और शराब के नशे में चूर, मखमल के बिस्तर पर सोने वाले इतना भी नहीं सोचते कि आज इन्हीं की रक्षा के लिए इनके अपने भाई

धरती अर्थी बन जाती है जब जब बारूद पिघलती।